आहत कम असम नहीं है. The gist of which is, no matter what kind of bungalow I stay in, no matter what kind of mansion or palace or home I stay in, and even if Allah tabaraka wa ta'ala, out of His fazal and ihsan, He gives me everything of this world, everything of both worlds, and I enjoy all the ni'mats, all the bounties, good home, good children, good wife, plenty of things to eat, good health, everything. मेरे दिल में तेरा अगर गम नहीं है तो ये सारी राहत कम असम नहीं है. इफ आई डोंट हैव दैट लव इन माई हार्ट ओ अल्लाह फॉर यू, इफ योर मोहब्बत डज नॉट कम इन टू माई हार्ट, देन ऑल दीज थिंग्स आर नो लेस देन पॉइजन टू मी. देन इट इज नथिंग बट पॉइजन, इट इज टॉक्सिक. विद ऑल दीज थिंग्स इफ आई हैव योर लव एंड ओबीडियंस, देन अल्हम्दुलिल्लाह. But if there's no love, there's no obedience, then it is nothing but poison. That means they enjoy the ni'mats if it is in accordance with Allah Ta'ala's hukam. They don't disobey Allah Tabaraka wa Ta'ala in those ni'mats.

0: سلام لے لو
1: We have to explain this, it'll take a lot of time, but we'll just go on. ये कैसी मंजिल पे आ गए हैं न कोई अपना न हम किसी के ये कैसी मंजिल

बहुत दिनों रह चुका निकम्मा, बस अब मुझे काम का बना दे। बहुत दिनों रह चुका निकम्मा, बस अब मुझे काम का बना दे। मैं कब से हूँ महवे ख्वाब गफलत, बस अब

तुझे तो मालूम है इलाही, बहुत ही गंदा है हाल मेरा। तुझे तो मालूम है इलाही, बहुत ही गंदा।

अपना बना ले, अपना बना ले, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। हो माई बिलव्ड अल्लाह, मेक अस योर्स, अपना बना ले, अपना बना ले, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह।

लब्बैक की कानों में सदा फिर तेरे आए, लब्बैक की कानों में सदा फिर तेरे आए, साकी तुझे फिर जाम मोहब्बत के पिलाए। हज़रत में अल्लाह तबारक व तआला टेक यू वेरी वेरी क्विकली अगेन टू द दरबार ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड मे योर इयर्स वंस अगेन लिसन टू द लब्बैक साउंड्स फ्रॉम ऑल साइड्स। इट इज समथिंग यूनिक, इट इज समथिंग दैट यू डोंट फाइंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। Groups of people from all countries coming into the Haram Sharif, Labbaik, Allahumma Labbaik, Labbaik, La Sharika Laka Labbaik, Innal Hamda wa Ni'mata Laka wal Mulk, La Sharika Lak. Of course, we also make Labbaik, but our Labbaik is an extremely weak Labbaik. We say to Allah Tabaraka wa Ta'ala that we are at your command, we are present. We are ready to fulfill all your hukam, all your commands, all your orders. But after the recitation of the labbaik, straight away we indulge in so many sins, even in the state of ihram. Allah tabaraka wa ta'ala must protect all of us. So he says, labbaik ki kano mein sada phir tere aaye, saqi tujhe phir jam muhabbat ke pilaye. May you drink the cauldrons from the ocean of the love of Allah tabaraka wa ta'ala and the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. May you be given that much to drink, that much to drink of the love of Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam, that you are distanced from nafs and shaitan and your whole life revolves around the ahkam of Allah ta'ala and His Nabi alayhi salatu wa sallam. That is the true jami muhabbat. दरबार नबी फिर तुझे अल्लाह दिखाए, फिर हिंद से तैबा की तरफ जल्द तू जाए।

बदी में गुजरी है उम्र सारी, तौफीक नेक अब हो। रहूं मैं मशगूल जिक्र ताअत, बस अब ये